सारा दिनस न रहन बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कह कबीर नर तिसे त्यावो बावरे आ संसारा। हे नर उस मालिक नु त्या, उस मालिक दी पूजा कर, तू ते संसार दी तरह एवें बौरा होया है, पागल शुदाई मेंटल होया होया है, इसलिए आ उस मालिक नु त्या जिस ते त्याउन दे नाल तेरी पूजा सफली हो सकती है। किदे नाल तू पूजा करनी चाहना है, इस मन नाल? शैब कहिंदे ने भी तेरा नहीं, इस तन नाल ये भी तेरा नहीं है, इस तन नाल ये भी तेरा नहीं है। आज इंसान नु मनुख नु हंकार ही इसे गल है, कहने तन मेरा, मन मेरा, तन मेरा, हे परमात्मा तेरा की है। ध्यान देना मेरी गल वल, हे परमात्मा तेरा की है। पर इत्थे साहिब कहिंदे ने हे मनुख, हे इंसान, सब कुछ ते है ही परमात्मा दा है, तू किहदे नाल पूजा कर रहे हैं? तेरी पूजा किवें हो सकती है, क्योंकि सब कुछ ते दित्ता परमात्मा दा है। हुण ख्याल करना, जे मनुख नू तन ना मिलदा ते मन ना हुंदा, जे तन ते मन ना हुंदा तन कदी भी ना हुंदा। परमात्मा ने तन दित्ता ते असीं तन कमाया है, जे परमात्मा तन ही ना देंदा तन कित्थों हुंदा? इसलिए साहिबां ने बाणी विच एक गल कह दित्ती सी, तन मन तन सब सौंप गुरु। भाई ये गुरु नूं दे दे, जदों ये गुरु नूं दे देवेंगा फिर हुक्म मन्नीए पाईए। जदों गुरु दे हुक्म नूं मन्नेगा फिर तू परमात्मा नूं पा सकने, फिर ओदी पूजा कर सकदे, इस तों बिना पूजा नहीं हो सकदी। इसलिए ख्याल बड़ा सुंदर है।

बिन गुर चरना पूजना, बिना गुरु दे चरना तो पूजा सब कूड़ सुवाओ। सारे मनोरथ सब झूठ हन कूड़ हन। आरंभता पहले दिन इसे ही गलत होई सी कि हरि दे नाम तो बिना सब कुछ झूठ है। ते इत्थे भी सतगुरु ने उपदेश यही दिता है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल नूं बड़े ध्यान दे नाल ते बड़े ख्याल नाल साडी चोली पा के कहिंदे ने कि जिहड़ा मनुख अपने गुरु दे चरणा तो बिना किसे होर नूं ध्याउंदा है भाई साहब कुछ झूठ है, सच नहीं है।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो, हे संत जनो हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावै जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है, पर कहिंदे ने इह दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर दे खान।

हर साचे भावे सा पूजा होवे। बस उस मालक नू पा जाए फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा ओ पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वो कहिंदा नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहे हां। कई लोग पगतावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है पगतावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन करने वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

0: पीठल बिन संसार नहीं सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत पीठल बिन संसार नहीं
1: कट कहिंदे नु हिरदे नु उते हर कट हर हिरदे हर जगह कर करदे हर जगह रहिंदे जीव तू कह नहीं सकदा कि परमात्मा इस जगह है उस जगह नहीं बाणी अंदर उपदेश नामदेव जी आखदे ने कि परमात्मा हर जगह रहिंदा है क्योंकि उन्होंने हर जगह परमात्मा नु वेखे जाने तके ते कह दिता है

0: ये सारा संसार परमात्मा तो बिना नहीं। जले हरी थले हरी बीठल बिन संसार नहीं, जले हरी थले हरी उरे हरी, बने हरी बीठल बिन संसार नहीं। कोई भी ऐसी जगह नहीं जिथे परमात्मा नहीं रही। इंसान ए ते तू ही कह कि परमात्मा सिर्फ गुरुद्वारे ही रहिंदा है, होर किते नहीं। कि तेरे घर विच परमात्मा नहीं उठे भी है, ये ते असी आप ही परमात्मा नूं बाहर कर दिता है। परमात्मा ते हर जगह रहिंदा है, तेरे हिरदे विच भी परमात्मा है, पर जाने या नहीं। इस स्थान ते असी आउने अपने आप नूं बड़ा पवित्र कर, कहने कि गुरुद्वारे चले हैं पवित्र होके जाइए, क्योंकि वह बड़ी पवित्र जगह है। ते पवित्र जगह बह के मन लगता है। इंसान इस जगह नूं जे पवित्र समझना है कि अपना घर तो पवित्र नहीं बना सकता। जे अपने घर नूं तो पवित्र बना लवे तो उत्थे भी हरी रहिंदा है, उत्थे भी परमात्मा दा निवास है। कि उत्थे परमात्मा नहीं रहिंदा, उत्थे भी परमात्मा। मैनूं एक गल याद आ गई, किसी ग्रह विखे दस गया बचन हुंदिआं गल अगां वधी। एक माता जी कहने लगे कि साडे घर एक महापुरुष सन, खुशी विच आए, आके उन्हां मैनूं दो गिलास फड़ा दित्ते। गिलास मेरे हथ विच आए ते मैं पुछ कीती, महापुरशो इन्हां गिलासां नूं मैं की करां? उन्हां महापुरशां कहा, बीबी ए मैं तेनू गिलास दिता है, ये गिलास हुण तेरे पास आ गए ने, ये हुण तेरी मर्जी, इन्हां दे विच तू मिठा पा, तू कौड़ी वस्तु पा, ये तेरी मर्जी। भाव कि वह परमात्मा का असूल है। उस परमात्मा ने सानू संसार ते भेजे, ये मनुखां दे बख्शी, मनुखां दे एक गिलास है। यह साडा मन है इस गिलास अंदर चंगी वस्तु पाईए माड़ी वस्तु पाई, ये असी पाने। जो कुछ भी कर रहे हैं ये असी इहो जिहा कर्म कर रहे हैं, परमात्मा तो नहीं कहिंदा। इसे तरह नामदेव जी उपदेश देंदे ने, कहिंदे ने जीव इबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। कि तू कह दिता है गुरुद्वारे ही रब रहिंदा है, होर किते? गुरुद्वारे तो तेरे अंदर भी, उते घर तेरे बसदा है, पर तू जानिया ही नहीं। जान, क्योंकि इंसान बाहर वेखदा अंदर नहीं चाती मारदा। जदों अंदर चाती मारेगा गल उदों ही बनेगी। हे इंसान, जे गुरुद्वारे नूं पवित्र करके समझना, अपने घर नूं भी पवित्र बना ले, उहनूं भी पवित्र करके जान लै, परमात्मा उत्थे भी तेनूं प्राप्त हो जाएगा। सानूं बाणी अंदर उपदेश मिलदा, आओ अरदास करिए कि पातशाह करो कृपा, सानूं इस बाणी ते चलण दा बल उद्यम बख्शो। भाई साहब ने आख दिता है घर घर अंदर धर्मशाल, गुरसिख का घर जेड़ा ना धर्मशाल है, घर नहीं। पर असी धर्मशाल केवल गुरुद्वारे नहीं समझ छड़े, आओ घर नूं भी धर्मशाल बना लई। जदों घर धर्मशाल बन गया फिर ओही गल पक्की हो जाएगी, ई बै बीठल ऊ बै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। कोई भी जगह परमात्मा तो बिना नहीं है, हर जगह परमात्मा रहिंदा है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, उहां तो जाइए जो इहां ना होए। उथे तां जाइए ना जिथे परमात्मा नहीं। जे परमात्मा घर बैठिया मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत है? फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मोड़े बसे रब इस हयालिया, जंगल क्या ढूंढे। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। ते साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का मिशन सी, जीव बार ना जा, घर बैठे हैं परमात्मा तेनू मिल सकदा, घर बैठे हैं प्रभु नू तू पा सकना है। जोगियां ने कंदरां मलियां, कन्न परवाल है, ਬਬੂਤੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਫਨੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁਟਕਾ ਆਟੇ ਦਾ ਦਿਓ, ਜੋਗੀ ਆਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਿਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਯੋਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਜੀਵ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ,
1: ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਸ ਆਸਾ ਬਲ ਸੇ ਸਦਨ ਸਵੇ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ।
0: ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸੇ।
1: ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਚਲ ਮਹੀਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰੇ।
0: ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਏ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ग संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भक्त रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देण वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। ये सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

गहन में परम गति पा ली। सप्त उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरुदेव मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस जहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिए नूं इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान अजिज्ञासु अजिक्र जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं दे नाल अपनी मित्रता पाई है कहिंदे हन ए जिहड़े कच्चे हन इन्होंने ते इत्थे ही छड़ जाना है कहिंदे हन तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं इस करके साध संगत नालों वड़ा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इसनू वरत लीए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहते उसनू मैं सारे नू सारे

खुद कर्म करता सी तो फिर रिस्पॉन्सिबल भी तो फिर आप ही सी, कोई और थोड़ा हो सकता है। हुण कहिंदे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ते लै रहे हैं अपने माड़े कर्मां दी, ते उन्हां दे विच्चों जो दुख उत्पन्न हुंदा सी। और बाबा जी इस गल नूं बाणी च सपोर्ट करदे हन, इस तरह कहिंदे हन दद्दा दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मां अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जन, भुल के भी कदे किसे नूं दोष ना दियो। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग सम पेन दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, नो अदर कैन कॉज पेन टू यू, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। कहिंदे हन जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो, जो जो कुछ मैं करदा सी हुण समझिया हां किथे किथे गलती सी, किथे किथे इग्नोरेंस सी, किथे किथे अज्ञान सी, किथे किथे मेरी कमजोरी सी, किथे किथे आदत तो मजबूर सी। कहिंदे हुण मैं समझिया हां, ते ए सारी दी सारी समझ ने कहिंदे मैनू ए अवेयरनेस दित्ती, मैं अपना सारा ही ओ लेखा जोखा पाट दिता है, अपने आप नूं जदों रिस्पॉन्सिबल ठहराया है तो हुण मेरी ही ड्यूटी बनती है कि मैं ही पहला रिस्पॉन्सिबल सी अपने आप नूं खराब करन दे विच, हुण ए मेरी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप नूं साधु दी संगत च बैठ के साधु वर्गा ही बनावां, उन्हां जिहा ही बनावां। कहिंदे हन बस उन्हां दी संगत दे विच बैठ के इमानदारी दे नाल अपने आप नूं जान लिया, देख लिया, समझ लिया, उस तों बाद मेरी जिंदगी दे विच कहिंदे हन परम गति आ गई, उच्ची अवस्था प्राप्त हो गई, अकाल पुरख वाहिगुरू दा मिलन होया। तो ए उतनी देर तक संभव नहीं है जितनी देर तक वह कॉन्ट्रास्ट साडे सामने ना आवे जिस दे विच असी अपने आप नूं देख सकीए। तो आओ अज दे कीर्तन दी इत्थे समाप्ति है। जो सानू सिक्ख्या मिलती है वह यह है कि असा उन्हां पुरशां दी संगत करनी है जिन्हां पुरशां दी संगत दे विच असी अपने आप नूं रिफलैक्ट कर सकीए, ते अपने अंदर नूं देख सकीए, ते फिर अपने अंदर नूं बदलन दे वास्ते इंस्टेंट एक्शन लईए अते होर किसे नूं रिस्पॉन्सिबल ना ठहराइए। उस दे नाल जीवन च अति शांति सुख और आनंद पैदा हुंदा है अते अपने अवगुणा नूं स्वीकार करन दे नाल ही उन्हां तों छुटकारा मिलदा है। असीं कहिंदे ना जब तक संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हराया कहो नानक हम नीच कर्म। इत्थे एक्सेप्टेंस है ना कि मेरे नीच कर्म हैं, ये सिर्फ कहण दे मात्र ही नहीं है कि असां रोजाना इसका नितनेम करना है, ये नीच कर्मां नूं जानना भी है और उन्हां नूं जानन तो बाद ये कहना है और फिर अरदास करनी है कि गुरु बाबा जी मेरे ते कृपा करो, मेरे कर्म बदलो, अपनी बख्शिश करो। उस तो बाद जो अकाल पुरख दी प्राप्ति हुंदी है प्रेम नाल गाओ और समाप्त।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल केस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते ने नाम तेरो केसरो लै छिड़कारे, कहते ने वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नु ही समझे है। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।